0: इले हम याद नहीं करना अपनी वी भूमि ते। उत्तराखंड में आजकल कई प्रकार का पर्यटक आना छन, दूर दूर बिटिन पर्यटक आना, जख मा हमारा कई पर्यटक स्थल छन, जैमा मसूरी, ऋषिकेश, हरिद्वार, जोशी मठ, जिम कॉर्बेट जो छो पार्क छ, नैनीताल, देहरादून, रामनगर, बद्रीनाथ, अल्मोड़ा, कई केदारनाथ एना वो छन जो मा आजकल हिमपात को भी दर्शन हो सकदन। हर जगह जगह का जो पर्यटक आना छ तकड़ी भी मुलाकात हो सकती है। तो समय मिलो तो भाई अगर आप छुट्टियों में छन तो अपने बच्चों लीते जरूर वे स्थान पर पहुंचो। लेवत सुना पहली हकु गीत।
1: पुराणों का हिसाब से ब्रह्मा जी ने जब सृष्टि की रचना रची तब सैरी मन ख्यात का वास्ता ई धरा को भी निर्माण करेंगे। तब दिप्तों ने ब्रह्मा जी में बोली कि हे भगवान, आपन सरी मन ख्यात खुनता पृथ्वी लोग बने आली, परंतु हमारा वास्ता भी ई धरती लोग में कोई स्थान दयावा। तब ब्रह्मा जी ने बोली कि जम्बू द्वीप में भारत वर्ष नौ को देश होलू, जयमा उत्तराखंड नामक स्थान पर आप लोग विराजला। और वास्तव में आज भी उत्तराखंड की भूमि देवभूमि का नाव से जड़े जाती। और यही सोची सोची की ई भूमि में हामन जन्म ले।